0: Lab.
1: Natural Plus.
0: Natural Plus. Your Connect.
1: Your Connect.
2: The chief executive is leading the government to draft the first Hong Kong's five-year plan, which is closely related to you and me. In the next 5 years, Hong Kong should further improve its competitiveness, consolidate and enhance its strengths, seize opportunities from national development, and strive for faster economic growth and better livelihoods. The chief executive has instructed the Constitutional and Mainland Affairs Bureau to hold a public consultation. We welcome your views. Let's shape the blueprint for the next 5 years together.
0: Metro Plus AM 1044 presents John Bon Jovi on Life.
3: Life is for the living. You have to make the most of it.
0: On Family.
3: Live your life with your family, with your friends, with your music. But always live your life without drugs. Because living your life with drugs means you have no life at all.
0: Life with drugs. No life at all.
4: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.
5: Namaste, sat sri akal, salam, kitna ho ji sare vadiya, apa ji bahut vadiya. Aaj hai ji 7 August 2026, humare paas hai kuch 5 announcement. Aaj hum thoda sa different kuch karenge. We're gonna try something different today. I'm gonna do all the announcement in one go. Jo 5 announcement hai, gonna do it in one go, and after that gonna play non-stop songs. Alright, let's try for this week and see how it goes. Alright, so pehla announcement hai, admission arrangements for nursery K1 classes in kindergartens for the 2027 and 28 school year. Government ne 2017-18 school year se kindergarten education scheme shuru kiya hai. इस स्कीम में ज्वाइन किए हुए किंडरगार्टन्स स्कीम है जो केजीएस सिर्फ उन बच्चों को एडमिट करते हैं जिनके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर किंडरगार्टन एडमिशन शॉर्ट में आरसी या किंडरगार्टन एडमिशन पास शॉर्ट में एपी अगर आप अपने बच्चे को 2027 और 28 स्कूल ईयर के लिए स्कीम केजी में नर्सरी K1 क्लास में डालना चाहते हो तो सितंबर से नवंबर 2026 के बीच एजुकेशन ब्यूरो ने ब्यूरो से इलेक्ट्रॉनिक आरसी यानी ईआरसी या एपी यानी ईएपी के लिए अप्लाई करना जरूरी समझे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वो पेरेंट्स जिनका बच्चा हांगकांग रेजिडेंट है 31 दिसंबर 2024 से या उससे पहले पैदा हुआ हो और 2027-28 में K1 क्लास ज्वाइन करेगा एप्लीकेशन ऑनलाइन आई एम स्मार्ट ऐप या ईडीबी की वेबसाइट से कॉल आप कर सकते हो हार्ड कॉपी फॉर्म और गाइडेंस नोट्स ईडीबी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो या होम अफेयर्स डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से ले सकते हो कोई सवाल हो तो ऑफिस आवर्स में ईडीबी के किंडरगार्टन एडमिनिस्ट्रेशन 2 सेक्शन से कॉन्टैक्ट कीजिए नंबर है 3540-6808 या 3540-6811 ओके बढ़ते हैं जी अगले अनाउंसमेंट पर दिस वन इज सर्विकल स्क्रीनिंग रिसीव रेगुलर सर्विकल स्क्रीनिंग हांगकांग में महिलाओं में सर्विकल कैंसर बहुत कॉमन है रेगुलर स्क्रीनिंग करवाओ तो इसको बहुत हद तक रोका जा सकता है अगर आपकी उम्र 25 से 64 साल के बीच है और सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है तो रेगुलर सर्विकल स्क्रीनिंग जरूर करवाएं बहुत सी महिलाएं जिनको एचपीवी वायरस है या कैंसर शुरुआती स्टेज में है उनको कोई लक्षण नहीं दिखते याद रखो चाहे कोई लक्षण ना हो एचपीवी वैक्सीन लगा हो या मेनोपॉज हो चुका हो तब भी स्क्रीनिंग करवानी बहुत जरूरी है स्क्रीनिंग करवाने के लिए मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स वुमेन वेलनेस सैटेलाइट्स फैमिली डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट या एनजीओस के पास जा सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में बुकिंग के लिए कॉल कीजिए 3166-6631 जनवरी 2026 से वुमेन वेलनेस सैटेलाइट्स में एचपीवी सेल्फ सैंपलिंग की सुविधा शुरू हो गई है हांगकांग आइलैंड में है जी नंबर 2855-1333 कावलून में है 2855-1222 न्यू टेरिटरीज में 2851-1722 ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए www.cervicalscreening.gov.hk पर जाएं अपना ख्याल रखें रेगुलर स्क्रीनिंग करवाएं ओके बढ़ते हैं हमारे तीसरे अनाउंसमेंट पर दिस इज हेल्थ टिप्स फॉर प्रिवेंटिंग हीट स्ट्रोक Center for Health Protection याद दिलाता है बहुत गर्मी में heat exhaustion और heat stroke से बचिए. Safe रहने के लिए regular पानी पियो, caffeine और alcohol से बचो. हल्का और ढीला कपड़ा पहनो. हवादार या air condition जगह में रहो. बाहर ज़्यादा मेहनत वाले काम मत करो. Outdoor activities सुबह या शाम को plan करो. Outdoor workers regular break लो और छाव में आराम करो. बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं और क्रॉनिक बीमारी वाले लोग ज्यादा केयरफुल रहें. बच्चों को कभी भी बंद गाड़ी में अकेला मत छोड़ें. यूवी इंडेक्स हाई हो तो सीधा धूप से बचें. एसपीएफ 30 या उससे ऊपर सनस्क्रीन लगाएं. यूवी ब्लॉकिंग सनग्लासेस पहनो और छाव में रहो. अगर चक्कर आए, सिर दर्द हो, उल्टी जैसे फील हो या कंफ्यूजन हो तो तुरंत आराम करो और डॉक्टर से मिलो. गर्मी में अलर्ट रहो, कूल रहो और अपना ख्याल रखो. ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं chp.gov.hk. ओके, आवर नेक्स्ट अनाउंसमेंट द वर्किंग फैमिली अलाउंस स्कीम. वर्किंग फैमिली अलाउंस स्कीम जिसे शॉर्ट में WFA कहते हैं अब एप्लीकेशन के लिए खुला है. ये हाउस होल्ड के नाम पर अप्लाई होता है. पूरा हाउस होल्ड हांगकांग रेजिडेंट होना चाहिए. अगर आपके घर वालों के टोटल वर्किंग आवर्स इनकम और एसेट्स लिमिट के अंदर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. एक महीने में एक से ज्यादा जॉब्स के वर्किंग आवर्स काउंट किए जा सकते हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों. अलाउंस के टाइप्स, टोटल 144 आवर्स या उससे ज्यादा बेसिक अलाउंस, 168 आवर्स या उससे ज्यादा मीडियम अलाउंस, 192 आवर्स या उससे ज्यादा हायर अलाउंस. हाउसहोल्ड की इनकम के हिसाब से फुल रेट, 3/4 रेट या हाफ रेट मिल सकता है. फुल रेट है बेसिक अलाउंस के लिए 1150 हांगकांग डॉलर पर मंथ. मीडियम है 1380 हांगकांग डॉलर पर मंथ. हायर है 1610 हांगकांग डॉलर पर मंथ. हर एलिजिबल बच्चे के लिए एक्स्ट्रा चाइल्ड अलाउंस भी मिलता है. फुल रेट 1610 हांगकांग डॉलर पर मंथ पर चाइल्ड. नोट कीजिए, जो घर WFA ले रहे हैं वो साथ में कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंस नहीं ले सकते. पूरी डिटेल्स, इनकम, एसेट लिमिट्स और एलिजिबिलिटी के लिए वेबसाइट चेक कीजिए www.wfa.gov.hk. कोई सवाल हो तो 24 घंटे वाली हॉटलाइन

कॉल कीजिए 2558-3000। ऑलराइटी, आते हैं हमारे आखिरी अनाउंसमेंट पर। दिस इज आवर लास्ट अनाउंसमेंट एंड आफ्टर दैट इट्स गोना बी नॉन स्टॉप सॉन्ग्स। वर्क अरेंजमेंट्स इन टाइम्स ऑफ एडवर्स वेदर एंड एक्सट्रीम कंडीशंस। तूफान, बारिश या एक्सट्रीम कंडीशंस के टाइम में पहले से काम की प्लानिंग कर लो। एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय से बात करके अरेंजमेंट्स कर लें। ऑफिस कब आना है, कब छुट्टी मिलेगी, काम कब शुरू होगा और घर से काम करने का ऑप्शन भी। गवर्नमेंट जब एक्सट्रीम कंडीशंस अनाउंस करे तो सिर्फ वो लोग जो कंपनी ने स्पेशली बोला हो सेफ तरीके से ऑफिस आए, बाकी सब जहां हो वहीं रुक जाए या सेफ जगह पर रहे। तुरंत बाहर मत निकलना, गवर्नमेंट के अगले अनाउंसमेंट का इंतजार करें। ज्यादा डिटेल्स के लिए लेबर डिपार्टमेंट का कोड ऑफ प्रैक्टिस इन टाइम्स ऑफ एडवर्स वेदर एंड एक्सट्रीम कंडीशंस देखें। ऑलराइट गाइस, वी हैव डन विद ऑल आवर अनाउंसमेंट्स। अब शुरू होते हैं नॉन स्टॉप गाने। सो आई एम गोना टेल यू हु रिक्वेस्टेड द सॉन्ग्स। सोनिया कौर ने रिक्वेस्ट किया है बैक आउटसाइड बाय सरदारा। सनी सिंह ने रिक्वेस्ट किया है थ्रेट 2.0 बाय इकबाल। आनम ने रिक्वेस्ट किया है गॉड्स फेवरेट बाय जॉर्डन संधु। यासिर ने रिक्वेस्ट किया है जुनून बाय मित्रास। रूबी ने रिक्वेस्ट किया है तेरे इश्क दी गूंज। हैदर अली ने रिक्वेस्ट किया है 12 साल बाय बिलाल सईद। मलिक जैन ने रिक्वेस्ट किया है डेविल बाय गिप्पी गरेवाल। अमृत संधु ने रिक्वेस्ट किया है दलेरिया बाय सिप्पी गिल। इमरान ने रिक्वेस्ट किया है 295 सिद्धू मूसेवाला। सनी सिंह ने रिक्वेस्ट किया है राजीनामा बाय लक्की घुमन। हैरी ने रिक्वेस्ट किया है नगीने लिश्के बाय बी प्राक। शहराज ने रिक्वेस्ट किया है जेला बाय सिद्धू मूसेवाला। गोरिया ने रिक्वेस्ट किया है गहरा दे बाय करण औजला। ब्रूनो ने रिक्वेस्ट किया है यार बोलदा बाय नॉमी जट। अफाई ने रिक्वेस्ट किया है DXB बाय चीमा वाई एंड गुरसिद्धू। एंड लास्ट में रूबी ने रिक्वेस्ट किया है तेरा ही रहूंगा। Alright guys, that's it for tonight. Milte hain ji next Friday, same time, same place. Tab tak ke liye ji chill karo, tension na lo, the chardi kalachar ho. Good night and goodbye.